0: तड़ाए माशे में जी दार तो ये जी पता शापर सी दे तशा है उपस्थित थी
1: जनाती से तारखा ना पर शापर के हम एश्मा वाशिंग पाउडर उपस्थित थी
0: एश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस्तर अंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तारखा ना दा गिले वे हर वक्त मुतहा कुर्श कड़ा ले होचे करा ना में कुरता एश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी और स्टोल कुर वाला ना फसल दी
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब रो दर्दया एश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियात थी
1: तारे खाना एश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियात दागा दी कपड़े सब युक्शली को जोर न जोर दारंटे सर खत्म करी जाखिर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात एश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सपोई पवा लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट या दाए दार तो ये दाव मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाव तो दफ बने गल से अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शोए मार्किट से देश मां मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफे जहीर सेब सारा उदरता मिला भी जी।

0: अच्छा जी, कॉल तरफ से रजी, बिल्कुल कॉल वहां से मिलेगी प्रोग्राम की वगैरह बिल्कुल मैसेज शामिल वगैरह बहुत कॉल शामिल भी बिल्कुल कैसर मोबाइल जोन मंगल मेला इलाज मार्केट चा मैसेज कर दे कैसर भाई मैसेज कर दे सलाम वालेकुम अस्सलाम डेरा वाला ना मैसेज के बोले बिल्कुल मंगल मिले की तरफ कैसर कैसर भाई सरा देश में टूल प्रोडक्ट मिले भी दस से फाइबर प्लेजे की दुकान नंबर चार की मौलाना अब्दुल हालिक से देश में टूल प्रोडक्ट मिले भी किफायत हो जड़ी मैसेज करे भी माशाला तारिक भाई आवाज ओके दे टूल तो सलाम वालेकुम अस्सलाम डेरा वाला ना सलाम भाई संग आवाज ओके दे रेडियो रेडियो चार सदा उम्मीद उम्मीद रेडियो चार सदे बने हया फ्री दिन तो मैसेज करे दे बड़ा ना डेरा बने ना लो यहाँ से मैसेज को बोले दिन अलावा बच्चे सलाम तारिक भाई वेलकम इश्मा हर्बल ऑयल जिंदाबाद आई मुस्कान खचक डेरा बने ना बिल्कुल इश्मा कॉस्मेटिक कंपनी जिंदाबाद अस्सलाम वालेकुम वेलकम भाईजान वानाइस बीजीएम शो दे समा डखा कही अच्छा अविचे अविचे मिर्जी चरता की देखे तस्वीर सलाम वालेकुम अस्सलाम मिर्जी बिल्कुल राशि खा शो तो बिल्कुल राशि आई एम डॉक्टर जोया फ्रॉम जुमेल थैंक यू मैसेज के बोले जे रहा ना भाई तारिक अजीज भाई सलाम वर्खा लाई बहानी था मनूर गुल था पलवशा था सितारा था शहीन था जलाल था मलाल अफगान था आई एम फाइका एंड कैनात लंडियाना डेरा मनाना थैंक यू सो मच मैसेज को बोले कॉल तरफ तरजीब प्रोग्राम की वो कॉल से मिले भी बिल्कुल गोरी चिकाल बने मुखसरा फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो सो को दिखम जैना दी असलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम ठीक भाई करेंगे
0: बिल्कुल खैर खैरियत सो खबर की दिखम जैना
1: अलगड़ाई
0: ना खबर है कि हाँ संगे जवान खराब आंदे
1: जबरदस्त

0: जी सही बिल्कुल कॉल चुकम दे शमीली एम एस डी बिल्कुल प्रोग्राम दो पर रेडी ने वही छजर जमा कोशिश को मुझे राशन प्रोग्राम दो पर डेरा मन ना गोरुज काल बने मुसर बल सो को दिखाम देना रजी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सो खबर है कि कम देना सफा शिरानी द डी ए हाना सफा शिरानी बखीर रगली डी आई खान सिंगे खी ठीक ठाक माशा बस खबर बदा खबर
1: डेर
0: मन
1: ना
0: संगे पुन शुमा
1: ब्यूटी क्रीम
0: रवड़ी ना मतलब बल चे हम रवड़ी ना बिल्कुल नखर पीगी बिल्कुल दुकानदार सुमर टाइम पूरे प्रति नखर पीगी बोले खर
1: पीगी
0: जी जी हाँ दारा तो वह सब अवेल वाड़े प्रोग्राम के इश्मा कश्मीर पाकिस्तान प्रोग्राम के सही था ठीक छो डेरा।

0: है।
1: अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आपका प्रोडक्ट में कहा मिलता है टोपे की चिकम दगा इंसाफ जनरल स्टोर दे द खैबर मार्केट चीदे सही दे टोपई द सदर चिकम बाजार तो मिलाई हुई की न्यू इंसाफ कॉस्मेटिक स्टोर दे हो चिकम टोल प्रोडक्ट मिलाई हुई की अगर खैबर

0: Radio Aman Network, News and Information Station. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो, रेडियो अमन।

स्वयं से भटक द अंबीर के लिए कर रखना अक्सर चिकल बाद जिम समझो नजमा पेबा चौदले नुमा डेर जियात मुख्तलिफ किस्म के क्रीम इस्तेमाल कर उमाता भी रिजल्ट न शुमिला इवाव रजकरक रेडियो बने में इकराम ला प्रोग्राम आवरे दो इश्मा क्रिक क्रीम हवाले सराय हबरे कवाले नमा हम अरुसा शॉपिंग सेंटर ना इश्मा क्रिक क्रीम रावल माशाल्लाह इवा हफ्ता इस्तेमाल सरा जमा पे नरमी सफा और हिस्ता शुए कजमा आवाज सोख हम चर्द चर्द आवरी न्यूज ली जरूर इश्मा क्रिक क्रीम इस्तेमाल गई इश्मा क्रिक क्रीम पे चौधले न इलावा बदन में देहरश हुई इस्ता से बदन और सरवसूजी या मुशुमान पेम पर देवाजी रेशी राशि दो टोल मसलों के जबरदस्त

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: ये है रेडियो अमन, रेडियो अमन आपके दिल की आवाज, दिल की आवाज।
0: यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
0: 88.4 FM.
2: ये है रेडियो अमन, रेडियो अमन आपके दिल की आवाज, दिल की आवाज।
3: दिस इज योर फेवरेट स्टेशन,
4: योर फेवरेट स्टेशन
3: रेडियो अमन 88.4,
4: रेडियो अमन 88.4.4।

जी जनाब ते तुसे मैसेजेस दा रोंदी आओ मैसेज दी जरूरत कड़ लाई शी जनाब उथा पिंजा उथा द्रिप हुंदे 85-83 दे मिश्रा दे मैसेज नंबर दाई राइट मैसेज ता लुट से बोली के आर एके खुश गप शापर वाला जाई फंदावर खबर वाला जाई एहे एहे रोएला जाई शेर टापा लतीफा हमारे दिल की आवाज है जी नींद नाराजी गना शाहिद खान जिंदाबाद और आर ए के पाइंदाबाद जी जी जी जी थैंक यू वेरी मच जी बहुत बहुत शुक्रिया वेरी वेरी वेरी गुड वेरी वेरी शरम रचो ग्रीन सुरानी बनो सलाहुद्दीन द ग्रेट गाना वाला गावा ना उसको दे वर वेदला गाना बलाओ रस्ते लागी जी डेरा डेरा मानना नुम देवी यार खड़ाएगा ये गाने पर जल्दी से दे नुम यार खड़ाएगा केदाईशी बला गाना वहां ना लगावा तरसो दे चे नुम ने वेर लागो शायद खाना मड़ माशे हाफिजा चंबई कर रखना मैसेज खड़ाएगा हाफिज चंबई करेगा जिंदाबाद जेरा जेरा जेरा मनना अस्सलाम वालेकुम वजीरिस्तान ना दा मैसेज रो गलाई दा गुहर एंड उस्मान रो तक खड़ाई दा नीचे पवेले टूप का ब्यारा टूप का खान दिए देर का टोला अवरेज वाई आटे पीना टेपीना वाया सावर वगा सड़ाई देख डालो कलेक्शन आ स्टडिया वालों ना के टेपीना ता देखो वाली दा डेरा डेरा मन्ना ना थैंक यू जी सलाम शायद खान गोलो अल्लाह लिस्नर जा और ये जी मचरा तो खुदा मलेरिया है बीजीएम वेरी गुड आ